वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

三只狗嗷嗷嗷嗷，三只狗嗷嗷嗷嗷，啦啦叽，哈嘛贝勒啦啦，阿里米恰班巴纳乌达，巴纳勒西瓦拉，米恰班巴纳乌达，巴纳勒西瓦拉。ऐ मीठा पान बनावता बना द सेवाला, मीठा पान बनावता बना द सेवाला। ए तौ कहनु पर छरे मौका मा, तौ कहनु पर छरे मौका मा, ए तौ कहनु पर छरे मौका मा, तौ कहनु पर छरे मौका मा।

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन
3: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ
4: होइन हामीसँग अझै आशा छ मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतीहरूको काख भरिएको छ
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो
4: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 9861414900
6: हाम्रो गाउँ हाम्रो सहर सफा सडक गुणस्तरीय शिक्षा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा र विकासका नयाँ सम्भावना
2: यी सबैको बलियो आधार हो हामी सबैले इमानदारी पूर्वक तिरेको कर
6: समयमै कर तिरौ जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिउँ
2: किनकि आजको हाम्रो करले नै भोलिको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्छ
6: कर तिरौ समयमै विकास गरौ सँगै
2: कर हाम्रो दायित्व समृद्धि हाम्रो लक्ष्य
6: आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज र रेडियो कृष्णसार एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश
7: यो कृष्णसार एफएम
8: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
2: टाइम
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
2: टाइम टेक

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: नेपालमा
2: पाजिना बिखा साँपनको विषयमा सुन। एक ठोर गरैचा जुन खास कैख रातिक समयमा घरभित्र पैठ सेक्ठ यी कटलसे निबठाइ फे स्याकट तर कटलक पाछ डेही भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्क हो सेक्ठा और रठ डोम जौन बडा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाँट फुले ठ डोम साँप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कैख सन्ध्या बिहान देख पर्छ निकर कटल सेफे लक्क हुइसेक था ओ और रठ कैली जाटक साँप निकर कटल कलसे कटलक भाग सुई था ओ बडा कर से बठे था रकट फे पाटी रोकर रकट बहना हुइसेक था ओसय क हमार देशक तराई सक्कु भूभागमा पाजेना बगोक्ने न फुन्कारना बाधे साँप यी साँप डसलक बेरमेन कम केल पाजे थ तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा।
3: बर्खा छ्याको अनाज बिक्रिना समयमा सापनको कटाई अथवा डसाईको घटना धिर बिना कथा बैया हो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनको बछ्यारा नासुबेर सापनको डसाईको घटना धिर बिना कर्नक पाजाइ
4: झुर जसिन सापनको डसाई हानिकारक नि रहत उहो फे यदि सपवा डस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर
5: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सेक जिठा।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अधिकतम 100% छुट लिएर आएको छ। यदि समयमै प्रिमियम नतिरेको कारण तपाईँको जीवन बिमा ल्याप्स भएको छ भने यही असार 26 गते भित्र नवीकरण गरी विलम्ब शुल्कमा अधिकतम 100% छुट पाउनुहोस्। नवीकरण शुल्क अनलाइन मार्फत वा नजिकैको शाखा कार्यालयमा गई बुझाउन सकिनेछ। थप जानकारीका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। सूर्य ज्योति लाइफ, जीवनको लागि

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: ओहो आज दाई हो नहीं मजा लगा तो मजा से दवाई करेना कहतो
2: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
1: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत त
2: वहां ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहां कई जाई
1: ए ओसिनो कला से उहां जाई मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
1: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिदा हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाई न वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुईत ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ति रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुईना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहां मिलत
1: ए ओसिड हो कला से बुडू हो वहां ले जाके उपचार करैले से वजह से सुन से कही त
2: एकदम समय में उपचार करैले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9984206697 9985823697 वो 9914-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: के

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: और क्या हाल खबर है?
1: हाल खबर ठीक है, लेकिन हम बड़े ध्यान से आपका देखित रहा है कि आप कहूँ खोए हो, कहूँ खोए हो।
0: खोए नहीं,
1: लेकिन आप बीच में बोल भयो कि सखी कह दियो, तो हम सोचे हम ही खोए हैं कहूँ।
0: हाँ।
1: लागम का हाँ। लेकिन हम तो आपका देखे मत खोए रहे कि आप इतनी देर से
0: देख, आप सोचे मैं खोए रही हूँ, मतलब सोचते
1: आपका देख देख के मतलब सोचित रहा है कि हमारे सखी बहुत बेस्त थी, कहाँ खोई
0: नजर आपके हमरे पर रहा है, लेकिन दिमाग सोचे मारा है,
1: तो आपे के बात तो सोचित रहा है।
0: अरे हाँ, तो वही हम की का कहते
1: कि तो आपके में खोए रहन भाई। अच्छा, स्वीकार करे मत का होता है, आपके में खोए रहन।
0: हाँ, तो वही,
1: लेकिन सोच ई रहा है कि हमका ला कि आप कहूँ खोई हो।
0: अच्छा,
1: हम बेस्त हो, अच्छी देर से वो प्रोमो बजत है हमारे सखी कहीं काम में बेस्त खोई है, लेकिन बाद में लग जब कहो हाँ सखी, तो हमका लग हम ही खोए हैं का, एकदम चौंके तना भाई गेन।
0: अब हम आपका अगले हफ्ता बतेबे किए रहे कि हम टोकओवर ही मारे म्यूजिक बजाए देते हैं कि साथी अगर हाँ, हाँ। श्रोता साथी यहाँ रोहार हुई है तो आई के इकट्ठा बैठ जाए
1: सही
0: कार्यक्रम सुने,
1: है ना? श्रोता साखी सखी लोगन का बटोरे खातिर हम लोग एक सेकेंड इका बजावा जाते हैं कि आप लोग जान जाओ कि अब दोनों सखी हल्ला करे आई थे, तो यही मारे हमरे लोग के हल्ला के साथ है, आप लोग भी शामिल हो जाओ जल्दी से, के मारे ही बजत है, तो जरूर आप लोग आए गवा गवा हुई, और फोन के घंटी भी बजक शुरू हुई गवा है, तो आज के विशेष दिन आप लोग जाना करा जाए आज फोन इन कार्यक्रम, तो पहले हम लोग स्वागत करा जाते फिर आगे बात करा जाए।
0: बिल्कुल, देखो सखी इंतजार भी नहीं कर पाई साथी और चले गए।
1: नहीं कोई समस्या हुई सखी, आज हमका लागत है मौसम के वजह से,
0: भी बत्ती भी वगैरह
1: बत्ती के समस्या है, फोन लाइन के भी नेटवर्क के समस्या है, सवेरे से हम भी अनुभव करे हैं इस बातन के, तो शायद हो ही सके तो वही कारण से भी हुई, लेकिन अब हम लोग बातचीत करा जाए तब तक और साथी हाँ, तैयारी
0: तो
1: करते
0: पहले,
1: हैं।
0: हाँ तो सखी जो है पहले साथी लोगों का नंबर तो बताया दिया जाए कि फोन लाइन से अगर आप
1: हाँ, तो बताए तो आप देरी हाँ, का है करे हो,
0: तो
1: चलो ठीक है,
0: बोले
1: एकदम
0: ठीक है, तो साथी आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए 0815-122 के लाइन पे आप लोग आवा जाए, फटाफट नंबर डायल करा जाए, और हमारे सखी है और हम भी है आप लोगों के समझ
1: में, और आपके समझ हम लोग 3 बजे तक रहा,
0: 3 बजे तक रहा जी,
1: ई सखी के साथ है,
0: हम वो ई सखी के साथ
1: हैं, अपने सखी के साथ माने आप लोग जाना जाते हो, एक दूजना आज ई काहे कहा थी
0: अगल बगल बैठे हैं हमारे
1: अगल बगल हम लोग बैठे ना, आप लोग जाना जाते कि हम दोनों जना के अत्ते नोक झोंक के कारण आप लोग हमारे लोग के नाम भूल ही नहीं सका जाते, फिर भी अगर नए श्रोता आप लोग
0: सखी अगर जिसे नाम अगर मतलब साथी लोग याद तो है, संध्या और चंदा ये तो पता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग का नाम से फेमस है
1: सखी नाम,
0: सखी के नाम से
1: साथी लोग हम लोग सबका भी सखी कह के बुलावे लगे हैं, अगला भी सीख गए हैं कि सखी कहा जाता है, तो अतः मिठास ही शब्द में सखी शब्द में कि हम लोग अपन नाम कुछ दिन में भूल जावे जे
0: हाँ। है ना, इतना मिठास है कि
1: देखो हमारी सखी हाँ कह दी ही नहीं, कोई बात नहीं हो भूले लगी
0: का, हम भूले भूले वाला बात पे ना ध्यान दिए हैं,
1: हाँ तो
0: मिठास वाला बात पे कहे हैं इनका,
1: लेकिन उनके साथ साथ हम बहुत बात कह गए आप हाँ कहे हो,
0: नहीं
1: मतलब हम लोग कुछ दिन में अपन नाम भूल जावा जे, सखी शब्द खाली याद रह जे,
0: नाम नाम तो संबोधन होते सखी, इसी बात नहीं है, सखी तो सखी, अब दो साथी सब तो एक यू होए का, मगर अपने जो है नाम को भूलत है
1: हाँ।
0: भूलत होगा
1: नहीं, हम लोग भूल जाए जब सखी सखी खाली कहा जाए,
0: अच्छा जब संजा संजा हुई है तब
1: अच्छा,
0: तब याद आई जी है
1: हाँ,
0: और जब रात हुई है जब उजाला
1: तो हमका याद आई जाये, ठीक है हम शाम के जब सूरज महाराज जब डूबे लगी हैं तो हमारे सखी का हमारा नाम याद आई जाए
0: हाँ।
1: और जब हमारे सखी उजरिया रात में जब पहले दिन से निकले लगी हैं तो हमका याद आई जी, लेकिन 15 दिन तो भूले रही पे ना, 15 दिन उजरिया रात रात है तो 15 दिन शायद भूल सके थे, आप लोग भी हो ना हमारे श्रोता लोग है ना याद दिलावे वाले हाँ। आप लोग भी याद दिलावा करा जाए,
0: और 15 दिन के बीच में भी हम लोग आवा जाए बस सखी सखी कह के, फिर 15 दिन में याद कर लिया जाए कि हम लोगों के नाम कहा है,
1: चलो ठीक है सखी, अब हमारे लोगों की नोकझोंक तो सुरह गवा, तो श्रोता लोग आप लोगों के पहले तो हम लोग फोन इन से स्वागत करबे करा करा हाँ। आप लोग ऐसे कार्यक्रम से जुटे रहा जाए, आप लोगों के स्वागत है कार्यक्रम में, और कार्यक्रम घर रंगनामा आप लोग हमारे सखी नंबर बताई नहीं, नंबर में फोन करा जाए, कार्यक्रम से जुटा जाए, आप लोगों से प्रत्यक्ष हम लोग बातचीत करा जाए, और साथ ही 3 बजे तक साथ ही रहा जाए, और आज के विशेष कार्यक्रम महीना के अंतिम दिन फोन इन कार्यक्रम रहा था
0: हाँ।
1: तो आप लोग से हम लोग का भी बतवाए मन रहा था, यही से हम लोग एकदम तैयारी के साथ बैठे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अतः बतवाए चुका गया है तो हमारे सखी को सुनाए दे हैं कि अब ऐसा मौसम सुहाना है,
0: मौसम सुहाना है मौसम अनुसार
1: जनते हो सखी, अगर बरसात होत है
0: हाँ, अगर जो है मतलब आपका जानते हो कि हम मौसम अनुसार गीत हम सुनाए भी है ना, सब लोगन का अच्छा लगता है, आप का तो बिल्कुल अच्छा लगता है और ऊपर बन से चाहे कही दे हो चाहे मुंह बनइयो की है सखी ना सुनाए,
1: अभी हम कही बाद में देखा जाए, अभी आपका अच्छा लगता है, अभी आपकी इच्छा का है,
0: अभी हमारी इच्छा है चले खत्ती
1: हाँ तो फिर चला जाए
0: इसके बाद लो तो ठीक है ना।
2: सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अधिकतम 100% छुट लिएर आएको छ। यदि समयमै प्रिमियम नतिरेको कारण तपाईँको जीवन बिमा ल्याप्स भएको छ भने यही असार 26 गते भित्र नवीकरण गरी विलम्ब शुल्कमा अधिकतम 100% छुट पाउनुहोस्। नवीकरण शुल्क अनलाइन मार्फत वा नजिकैको शाखा कार्यालयमा गई बुझाउन सकिनेछ। थप जानकारीका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। सूर्यज्योति लाइफ, जीवनको लागि

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: बहुत देर से जो है कोई साथी
1: में देर से तो और देर न करा जाए, ना देर करा जाए, ठीक है। से अभी हम लोग स्वागत करक है।
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी, को कहाँ से?
2: हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्कार। कार्यक्रम घर अंगना में स्वागत है, को कहाँ से बोला जाता है?
2: धन्यवाद, हम यही नेपालगंज वार्ड नंबर एक।
1: हाँ नमस्कार, नमस्कार, आपके शुभ नाम?
2: हमारा नाम विदेश रिमाल है
1: जी।
2: आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा थे।
1: हाँ धन्यवाद,
2: 10-15 मिनट और लंबाई मिली तो और बढ़िया होगा।
1: वैसे कोई बात नहीं है, आप ऐसे कार्यक्रम सुना जाए। हम लोग के कार्यक्रम 3 बजे तक है और ये कार्यक्रम में कार्यक्रम घर अंगनामा, आप लोगों के घर अंगनामा हम लोग 1 बजे से 3 बजे तक रहा जाता है। तो आपका ये कार्यक्रम मतलब बढ़िया लाग, कस बढ़िया लगा था और आगे का करा जाए तो बढ़िया हुई?
2: बहुत बढ़िया लगा थे, और थोड़ा विज्ञापन थोड़ा कम बजाइए, वो कार्यक्रम लंबा ही है।
1: ये हमने सखी नहीं मानत है का, ये विज्ञापन के गठरी बांधे रखे है यही से।
0: अब का किया जाए दिनेश जी, अब जो टाइम रहा थे वही मुताबिक चले पड़ा थे ना, विज्ञापन के भी टाइम रहा थे।
2: वो तो सही बात है,
1: ठीक है। और आपके क्या हाल चाल है, सब ठीक है?
2: ठीक है।
1: तो हम दोनों सखी का आप लोग जाना जाते?
2: गाना तो हम नहीं गाते लेकिन एक ऐसा कीजिए हमरे लिए, हमरे दोस्त लोगों के लिए।
1: हाँ
2: एक बढ़िया गाना आप।
1: हाँ तो गाना के बोल बतावा जाए।
2: लता मंगेशकर का चाहे जौन गाना है,
1: लता
2: जी बढ़िया गाना, आपके पसंद का गाना बजा दीजिए।
1: लता जी के,
0: ठीक है ठीक है
1: ठीक है, लता जी के। वो भी आपका मतलब वैसे तो पुराना गीत ज्यादा पसंद है
2: जी, अखियों के झरों के से बजा दीजिए।
1: ठीक है, अखियों के झरों के से जरूर सुने पावा जी। तो ऐसे कार्यक्रम में जुटा जाइए हम दोनों सखी, एक सखी चंदा और हम संध्या, आप लोगों के हर एक शनिचर के दिन ऐसे रहा जाते है, मिला जाते है। तो ये कार्यक्रम में आप नवा आवा का हमका लाग है, पता नहीं बाकी तुम्हारे सखी जाने।
0: हाँ ऐसे लगा था हमका भी।
1: धन्यवाद है आपका, फोन करेगा मेहनत करेगा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे कार्यक्रम जुड़े रहा जाइए,
2: धन्यवाद।
1: ठीक है नमस्कार, नमस्कार।
0: तो सखी,
1: हाँ सखी,
0: तो रहे दिनेश जी है ना?
1: हाँ
0: फोन करना है
1: दिनेश जी रहे, और फिर गीत संगीत भी सुने कहीं ना कार्यक्रम में, ऐसे भी हो जाते कभी कभी नए श्रोता लोग भी आवते हैं तो अब का बोली हो ही जाते है। वैसे भी कार्यक्रम में प्रशंसा करते कहीं नहीं, और कार्यक्रम में भाई पुरानी गाना सुने कहीं ना लता जी के, तो जरूर सुनावा जाए सखी। और अभी विज्ञापन के बात रहा था तो हम लोग एक दूसरे का होते कि लंबा समय कार्यक्रम भी चलावा जाता है। हाँ समय अनुसार विज्ञापन बजाओ भी पड़ा था,
0: तो ठीक है सखी अभी हम लोग व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाए।
1: हाँ फिर गीत
0: सुनते जाए,
1: चलो।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: गाना कुछ ऐसे होत है ना कि जब हम ही लोग मस्त हो जावा जाते हैं
1: और के झरो खो से हाँ,
0: खोए जावा जाते हैं। हाँ। ना बोले मने नहीं करत है,
1: बोले मन नहीं करत है, जबरदस्ती बोलत हो का?
0: हाँ मतलब लगत रहा है कि अब सोई जावा जाए। अब मौसम भी इतना बढ़िया है।
1: हाँ, मौसम भी सारा साथ देते है ना।
0: हाँ अब आज का है कि जब घाम तपाका घाम लागा था पसीना चुआ कर था तब रहिश नहीं होत है। अब आज तनी हवा भी चलत है,
1: ठंडक मिलत है ना, हवा थोड़ा मिलत है तो
0: अब रात में पानी बरसा है तेज, अति टेम बदरी है और हवा चलत है, ठंडा है मौसम,
1: बाहर के जो हवा है वो संगीत सुनो तो अच्छा लगता है और है ना।
0: अब गीत संगीत तो सुना जाते, करे वाले तो काम देखा जाए कि खेतम चारों तरफ आदमी दिखाते हैं, बैठौनी शुरू है और बैठौनी के साथ
1: इधर से दिखाते हैं।
0: अब आप तो अभी स्टूडियो में देख लो कि हाँ जानो दिखाते है, अभी हम लोग बैठे हैं ना अंदर,
1: महसूस कर सका जाते हैं
0: एक ही वजह से। लेकिन अब हम इधर उधर बाहर से जब आए हैं तो हम देखते आए हैं कि खेत भरे माँ सबके बैठावत हैं और कती सखी लोग गाना गाते बैठावत हैं, कोई खेलत है, कोई एक दूसरे का चहला मारत है।
1: लागत है सखी आप वहारे से आए हो, मतलब गांव की तरफ से आए हो का?
0: हाँ
1: मेड़ी मेड़ी,
0: हाँ मेड़ी मेड़ी नया आए हैं, सड़क से आए हैं, लेकिन सड़क के किनारे तब न खेत न हो, खेत
1: किनारे किनारे वही तो
0: मतलब हमारे खिंचाई कर बंद न अब बाजार मतलब तो बाजार के अंदर है तब वो खेत ना दिखाई दिया। हाँ। लेकिन आपको के नेपाल गंज में इधर उधर तो सड़क किनारे भी तो खेत है।
1: हाँ,
0: तो क्या करियो माँ चश्मा काला पट्टी बांध ली कि हाँ हम सड़क पर चली थे तो खेत में ना देखी,
1: नहीं देखो तब देखियो नहीं तो बताइयो कैसा बताए। हाँ। भी तो
0: अच्छा हाँ, तो यही जैसे देखो मन तो लाग रहा है कि खेते में जाए के हम लोग गाना गाए के बैठा हुआ जाए ना। आप बैठाए हो कि नहीं बैठाए हो?
1: हम अभी सखी तो बैठाए तो नहीं है लेकिन मन बहुत लागत है, लेकिन
0: तो फिर अगर मन लागत तो फिर चलो फिर बैठावा जाए।
1: हाँ, मगर हाँ,
0: सिखाए देवे।
1: हाँ, हाँ, चलो ठीक है चलो और का है ना बैठावा जाइए।
0: हाँ, बैठावा जाइए। हाँ, तो मतलब ऐसे सखी का होता है कि जो दुनिया में मतलब जावा जाए काम करा जाते वही मतलब बहुत अच्छा लागे लागत है कि जैसे चहला पानी में खेत में सब सखी लोग मिलके
1: अब गीत गाय के
0: बैठौनी गाना गावत है। वैसे भी अब क्या करा जाए जब गाना नया होता तो ऐसे भी अंताक्षरी गाना गाय के
1: तो सखी नया आवते अब यही यही सब गावा जाइए और का है।
0: हाँ हाँ यही सब गावा जाए, फिल्मी गाना गावा जाए तो एक दूसरे से बतवात में और काम करत पता नहीं लागत है और बैठाए भी जाते है। तो जब खाना जो कहत नहीं है लेके जाओ बांध के ले जाओ, जब काम करो के बाद जब वो खाना खाओ बैठ के तब बड़ा मिठास लागत है। हाँ, खाना हाँ। और बढ़िया भी लागत है
1: और जोंधरी की रोटी अच्छा लागत है ना सखी?
0: अच्छा
1: काहे ना अच्छा लागत है?
0: हाँ जोंधरी की रोटी, अब बताई बैठौनी में जोंधरी की रोटी ले जाई है, रोटी प्याज चटनी लेके जाते हैं प्राय ज्यादा और खावा भी जाते है। वो भूजा चटनी जैसे मान लो मिर्चा लहसुन भूज के
1: धनिया का भूज के
0: हाँ भूंद के जो चटनी बनावत है
1: बड़ा बढ़िया लागत है सखी है ना।
0: तो वैसा करो सब चीज इनका बढ़िया लगा था और बैठावे भी चला जाए कहा थी
1: जाए।
0: तो ऐसा करो ना तो फिर फोनो अभी ना आवा है तो फिर चला जाए हम
1: तो
0: लोग
1: ठीक है चला जाए और
0: गीत संगीत गाते फिर अभी आवा जाए।
1: हाँ, ठीक है से भेंट घाटो हो जाइए।
0: हाँ ठीक है चला जाए
1: चला जाए।

0: दुखेको दाँतको जराको उपचार
1: खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने रगत आउने पिप बग्ने मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार पहेँलो खैरो दाँत सानो र ठुलो दाँत छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ
1: फोन नम्बर 081-532-375 नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ एनएमसी 19393 बिडिएस दिल्ली एफएजिसी मणिपाल सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक
3: विशेषताहरू दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने किरा लागेको दाँतलाई भर्ने दाँत निकाल्ने दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने मेटल क्राउन बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने डिजिटल एक्सरे सेवा
4: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451
5: हाय रे दिदिया हमार टिहुनी बहुत पीरा थे बहुत दवाई कराए डारे नाई ठीक थे
6: सुनो बहनी खुशी के खबर
7: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई पित्त थैली के पथरी अपेंडिस हार्निया हाइड्रोसील बबासीर फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव रीढ़ टिहुनी पिराप झंझनाहट हो नस पिराप झमझमाप हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी निसंतानता गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है
8: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता कंसल्टेंट सर्जन यूरो सर्जन जनरल कैंसर मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल मिश्रा कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सुर्खेत रोड आदर्श नगर नेपालगंज 10 बांके वन कार्यालय के नेरेन पेट्रोल पंप के पछुए संपर्क नंबर 081-531-000
9: सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अधिकतम 100% छुट लिएर आएको छ यदि समयमै प्रिमियम नतिरेको कारण तपाईँको जीवन बिमा ल्याप्स भएको छ भने यही असार 26 गतेभित्र नवीकरण गरी विलम्ब शुल्कमा अधिकतम 100% छुट पाउनुहोस् नवीकरण शुल्क अनलाइन मार्फत वा नजिकैको शाखा कार्यालयमा गई बुझाउन सकिनेछ थप जानकारीका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सूर्यज्योति लाइफ जीवनको लागि

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
2: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
2: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
1: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जायत हैं कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
2: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: आई विवेक उठ्यान खासक छपासोर जिन्छ हो
4: ए दै मर्गिनु मर्गिनु
3: ओइ संगरेन एक घरी फुटबल बन्द कर त विवेक खन वहा का हुइलन वहा छपच्यारो ना जाओ कहलन हु
5: ओ हेरो त मोर सब भागल पाटल की का हो विवेक खन ए हरि स्कूल एक फुटबल ह्या रहिलक त झन का दशा पो आपलन
4: देउ हाली मेन त सब काटल मुना मुना
3: विवेक जिना क्या संघारु देव शांत होकर ढ्यूर निचल का बैठो हमरा तु यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पुगेबी अइ पारस तू घरक दाबु हन मोटरसाइकिल ले खाए कहो त
5: हो विवेक हन यहाँ खुला ठाउँ मा सुताई ढ्यूर झल्याङ झुलुङ निकरा खन मारी कापी ले ओही हन हक दिहेटु फिल्म मा काट राखल सोइटी बा काटल ठाउँ मा न छुओ चलाई निउइ न
3: आप मै विवेक हन सजिल हुइना कइ ख वाकर कसके ल पेटी ता धीरा धीरा खोल देटु ओ घरी वो मुनरी फेक हार देहम
5: बिठारो सन मै यही बेला विवेक क जुत्ता उ मजा धीरा धीरा निकाल देहेटु
3: ढ्यूरचसिन सापन का दसाई खतरनाक नि रह समय मोजो उपचार कराई सेक लसे बिखा सपन का काटल मन यहाना फे बचाई सेक जिठा सपवा कटलक मन यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्र में पुगाई सेक लसे झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्र में पुगाई सेक लसे

0: सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
2: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में ही अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
2: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बाके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
2: हाँ सखी, कोई साथी हैं टेलीफोन लाइन में? बहुत देर से बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लिया जाए पहले।
3: ठीक है, करा जाए।
2: हेलो
4: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार
4: दोनों जन सखी लोगन का।
2: जी, दोनों सखी लोगन के तरफ से नमस्कार।
4: और मैडम का हाल चाल है?
2: हाँ सब बढ़िया है, हम दोनों सखी के। आप बतावा जाए, आपके शुभ नाम कहाँ से?
4: हमारा नाम साकिर खान है मैडम
2: जी।
4: हम जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 बुढ़िया गांव से बोली थे।
2: अच्छा, बुढ़िया गांव से बोला जाता आप।
4: आपके नियमित श्रोता हुई कुछ दिन से, सुनी तो पहले भी रहा लेकिन 4-5 साल से नियमित
3: फोन नहीं करा जाता रहा। सुना तो पहले जाता रहा लेकिन फोन नहीं करा जाता रहा। कुछ दिन से हम नियमित सोता, फोन करके भी नियमित हो ही गवागा है नी सर।
4: हाँ वही तो गवागा है मैडम। कार्यक्रम आप लोग के बड़ा अच्छा लागा थे, हमारे गांव घर में बहुत लोग सुना जाते है।
3: धन्यवाद है
4: आप लोग।
3: और आप इतने मेहनत से फोन भी करा जाता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका भी पुरानी गाना ज़्यादा पसंद है, गाना भी आपका बताई दिन जाए, आप कौन गाना सुने के चाह जाते हैं।
4: आप लोग पहले पुराना गाना कह दिया, गाना मन तो
3: मतलब
4: नया गाना कह रहा है।
3: मतलब पुरानी गाना माने इंग्लिश में अंग्रेजी में कहा जाता है ओल्ड सॉन्ग, कहा जाता है
2: सदाबहार,
3: सदाबहार कहा
4: जाता है, ओल्ड इज गोल्ड। हमका एक तो गाना सुने रहे मैडम, वही मेरे फोन कर रहे।
3: हाँ बताओ जा सर।
4: लेकिन आज आप लोग के लड़ाई ना सुने मिला मैडम, हमारे यहाँ बत्ती
3: लड़ाई है। अभी बहुत ज्यादा हुई के वरा ही मारे, हम थोड़ा शांत हो गए हैं हम लोग।
2: हाँ, लड़ाई ना शांत हो गए मेरे सखी,
4: तनी मजा ना आया। हमारे गांव घर में सब पूछा था कि मैडम लोग के लड़ाई
3: नहीं नहीं आप कार्यक्रम अभी थोड़ा पूरा ना सुना गया, लड़ाई बहुत ज्यादा हो चुका है
4: तो हमारे यहाँ बत्ती ना रहे मैडम, उसके वजह ना सुन मिला।
3: हाँ, अच्छा, तो हम दोनों सखी गई रहीन बैठावे, बैठाव के बाद थक गवागा है का खेत
4: तो
3: बैठाया
4: तो हम लोग खेतन महन हिया लगाए एफएम सुना जाते हैं मैडम।
2: तो सर का है कि हम लोग बैठाए के आवागा है ना, थोड़ा थकान लगा है ज्यादा, तो नहीं थकान दूर हो जाता अब शुरू हो जावे जी।
3: रोटी ज्यादा खाई
4: ना करा करो मैडम, आप लोग दूजना का ऐसे प्यार सद्भाव प्रेम बना रहा
2: है। कहा तो सर कि झगड़ा करा जाए
4: ना, लड़ाईवा करो तो नहीं, जायज करो तो नहीं, लोग तान चला तो हमका तो मजा आवत
3: है। ठीक है, धन्यवाद है। लेकिन अब आपके का हालचाल है, आप भी ऐसे जय झगड़ा करा जाते कि नहीं करा जाते?
4: अरे भाई झगड़ा तो कभो कभो हो ही जाता है, स्कूलों में आपस में भी हो ही गया है कभी।
2: हां सर, कहत नहीं है, जहां 4 बर्तन होते वहां खटपट हुआ करत है।

0: जहाँ हुए हुए तो लड़ाई हुई
1: तो खटपट का है ना सर, उठाए के बर्तन न फेंक दे बड़ा बड़ा माने
0: हां तो पता ना बना वाला भड़वा ना रही जाए तो
2: भड़वा नहीं जाए फिर बाद में लेके आओ
1: बतावा जाए। अब जैसे मान लो बजे वाला गीत है और कार्यक्रम में ऐसे क्या करा जाए तो और बढ़िया हो, कुछ सर सलाह भी दिया जाए।
0: ये कार्यक्रम का चलाने के लिए अभी सीजन में ये बरखा आम चला थे, जैसे पानी वानी के बारे में है ना, मच्छर सच्छर अब पानी के जमे की वजह से भी मच्छर वच्छर लग गई के बारे में भी थोड़ा ज्ञान वन दिया जी। अब मौसम चेंज होने की वजह से नहीं, छोटे बच्चे और बड़े लोगों का भी अब परिवर्तन, मौसम भी कुछ परिवर्तन होते बारिश की वजह से, उसे कैसे बचा जाए उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दिया जी। हम लोग
1: ठीक है, जरूर बहुत बढ़िया विषय बतावा का है, जरूर हम लोग का ध्यान रखा जाए। और आपके बजे वाला गीत आपकी का की का सुनावे के चाह जात है?
0: आपकी वाला बजे वाला गीत हमारे एक तो स्टेशनरी के साथी हैं, अभी आपका फोन भी करना है शायद।
1: अच्छा
0: रिमाल दई
1: हाँ,
0: डायमंड होटल में अभी तालीम चलाते हमारे गाँव पालिका प्रमुख छब्बन खान जी।
1: अच्छा
0: और रब्बान भाई।
1: अच्छा
0: और दीपेंद्र पांडे भाई और हमारे हरि प्रसाद उपाध्याय जी का सुनावे चाहित रहे गाना एक तो।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके बजे वाला गीत जो ना आप गीत के बोल तो बताइबे नहीं करेगा।
0: हाँ गीत के बोल बतावे जी तो मैडम सुन लिया
1: बतावा जाए फिर गीत के बोल बतावा जाए आप कौन गीत सुने चाह जाता है कि कौन गीत सुनावे चाह जाता है
0: सुनाए तो वो फिरकी वाली तो कल
1: फिर आना। ये तो टिकटॉक पूरा हाईलाइट कर दी से और इसे भी गीत हाँ। संगीत तो है ये है
2: और जैसे कि सर जैसे ये तो पुराना गीत हो है ना यही के रिमिक हाँ। बनाया तो आप रिमिक वाला मतलब नया वाला सुने चाह जाते हैं ओल्ड इज गोल्ड वाला या फिर
0: हम ये रोज इज गोल्ड वाला ना ओल्ड इज गोल्ड
2: ओल्ड वाला
1: अच्छा ओल्ड इज गोल्ड वाला सुनने चाह रहे
0: मोहम्मद रफी वाला।
1: ठीक है तो आप ऐसे एफएम कार्यक्रम सुनते रहा जाओ अब आपके वो गीत जरूर बजी और संपूर्ण श्रोता जो आप लोगों के साथी लोग हैं जिका सुनावे कहा गया है हमारे तरफ से भी आपके बजे वाला गीत आप लोग ध्यान से अच्छे से बढ़िया से सुनते रहा जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप दोनों सखी लोगन का फिर से ठंडा ठंडा नमस्कार।
1: हाँ तो आपका भी ठंडा नमस्कार है और ऐसे खुशी रहा जाए स्वस्थ रहा जाए और फिर कार्यक्रम में मिलते रहा जाए।
2: हाँ और कार्यक्रम में फोन किया गाय के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।
0: ले मैडम हमार ख्वाहिश भी सुन लिया गाय के लिए आप लोग का डबल डबल धन्यवाद।
1: ठीक है नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।
2: हाँ तो सखी ये तो रहे बुढ़िया गांव से साकिर
1: सर हाँ।
2: सर रहे और जो भी अपने बताएं सुझाव है ना।
1: हाँ सही बात है अब बरखा तो इसे धैये है और बहुत जगह पानी जाम हो जाते कई दिन तक भरा भी रहा था और साथ ही साथ जो घर के नाली रहा थे वो भी सफाई नहीं रहा था तो जिसके वजह जिसके कारण से मच्छरन के या फिर अन्य रोगन के जो उपजनी हो थे समस्या हो थे उसके बारे में कहीं ना जरूर हम लोग एक
2: मतलब हाँ, बात का मन करा जी
1: जानकारी मैंने प्रश्न रूप से हम लोग जानकारी लेके जरूर हम संपूर्ण श्रोता लोग सुनावे कोशिश करा जाए। और आज के खातिर आज हम लोग के फोन इन कार्यक्रम है तो फोन में अन्य साथी आप लोग भी ऐसे सुनते रहा जाए कार्यक्रम ऐसे फोन करके सर सलाह जरूर दिया जाए और विषय वस्तु के अनुसार भी आप लोगों का भी कोई कोनो विषय सुने मन है कि अन्य जानकारी और लेख मन है या देख मन है तो आप लोग फोन से जुड़ सका जाते हैं और कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ साथ सर सलाह भी हम लोग कह सका जाते हैं
2: कह सका जाते हैं।
1: तो
2: सखी हम लोग ये तो बता दिया जाए कि जैसे हम लोगन की प्रोग्राम कहाँ पोस्ट होते हैं कैसे सुनी है ना ये सब तो बताना जरूरी है बीच बीच में ही हम लोग
1: हाँ कहे ना बतावा जाए। अभी तो अभी हाल के लिए तो हम लोग जैसे कृष्णसार एफएम से कार्यक्रम सुनावा जाता है कृष्णसार एफएम के स्टूडियो में अभी हम लोग लाइव सुनाई सका जाते हैं लाइव आप लोग 3 बजे तक सुन सका जाते हैं। उसके बाद तो है ये है कि कृष्णसार के अपन फेसबुक आईडी है जी में ये प्रसारण होते हैं कार्यक्रम वो भी वीडियो कटिंग वीडियो कह के हम लोग डाला जाता है और साथ ही साथ ये कार्यक्रम वीडियो यूट्यूब में भी जाते है और हम लोगों के म्यूजिक हर के एक आईडी है उमा भी जात है और उसके साथ साथ हम लोग अन्य साथी लोग भी शेयर करते हैं हम लोग भी कार्यक्रम श्रोता अपन जैसे सखी चंदा हैं हम हैं संध्या हैं हम लोग के अपन व्यक्तिगत आईडी में भी का शेयर करा जाते हैं कई लोगों का टैग भी करा जाते हैं ऐसे आप लोग भी कहीं से भी का यूट्यूब से भी सुन सका जाते हैं कृष्णसार एफएम के फेसबुक से भी सुन सका जाते हैं और अन्य हम लोग जो शेयर करा जाते हैं वहाँ भी का सुन सका जाते हैं बस वो वीडियो में आप लोगों का गीत संगीत ना रहते बाकी हम लोगों के बात बत कही आप लोग जो फोन करा जाते हैं अन्य जो साथी लोगों के बत कही रहते वो जरूर में शामिल रहा थे तो चला जाए सखी हम
2: हाँ तो सखी चला जाए व्यापारिक विश्राम के तरफ इसके बाद प्यारा सा गीत सुना जाए।
1: हाँ ठीक है चला जाए
3: नमस्कार
2: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होता है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
3: सुनो, हुआं औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता करके तहे दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377।
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
6: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
7: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छूट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारंटी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
6: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
7: संपर्क 97051148 47।
6: सोफा हब नेपालगंज,
7: विश्वास में नंबर एक,
6: क्वालिटी में सब भन्दा बेस्ट।
8: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा भाग 2। शर्माजीको परिवार सबै डराएका हुन्छन्, तर त्यति ठूलो भूकम्प आएर हल्लाएको त्यो घरलाई केही हुँदैन। यसरी नै दिन, महिना, वर्ष बित्दै जान्छ, अनि एक दिन फेरि अचानक ठूलो भूकम्प आएर त्यो श्री FE550D बनाएको शर्माजीको घरलाई झन धेरै हल्लाउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
9: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अधिकतम 100% छुट लिएर आएको छ। यदि समयमै प्रिमियम नतिरेको कारण तपाईँको जीवन बिमा ल्याप्स भएको छ भने यही असार 26 गते भित्र नवीकरण गरी विलम्ब शुल्कमा अधिकतम 100% छुट पाउनुहोस्। नवीकरण शुल्क अनलाइन मार्फत वा नजिकैको शाखा कार्यालयमा गई बुझाउन सकिनेछ। थप जानकारीका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। सूर्य ज्योति लाइफ, जीवनको लागि।
10: के तपाईले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
11: वाउ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
12: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस NMC छ नि।
11: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
12: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित AC कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
11: ल, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
13: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
11: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित। ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 5836 5777 98 5 580 2895 र 98 580 3611। नेपालगंज बहुमुखी कैंपस एनएमसी सफल भविष्य को बलियो आधार।
2: आज आज म एकदम खुसी छु।
14: हैन, आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त?
2: आज मैले रेडियो कृष्णसारमा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने, मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो, म त भुल्ली नै बाबालाई भनेर जान्छु।
14: ए हो र, ल ल भन न त, तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ, हामी पनि जानौँ।
2: ल सुन, त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित जिएम कलेजको बिबिएस प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ। अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू, पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, एजुकेसनल टुर, सिए काउन्सिलिङ क्लास सञ्चालन, मोटिभेसनल क्लास, आइसिटी क्लास, एसी क्लासरुम, इन्डस्ट्रियल फिल्ड भिजिट, क्रिकेट मैदान, बास्केटबल कोर्ट तथा अन्य खेलकुदका क्रियाकलाप, क्यारियर काउन्सिलिङ, जब प्लेसमेन्ट तथा क्याम्पस सेलेक्सन लगायतका विविध कार्यक्रम रहेछन्। यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि मैले त यहीँ जाने निर्णय गरेँ। अब भन तिमीलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो?
14: हो रहेछ, एकदमै ठिक लाग्यो मलाई त। अब म पनि मेरो बहिनीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पास गराउन सफल कलेज जिएम कलेज नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँकेमै भर्ना गर्छु।
2: ल सुन, त्यसो भए 98 580 40 388, 98 045 086 26 र 98 580 85 040 मा आजै सम्पर्क गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ है।
14: ल ल हुन्छ हुन्छ ल।

0: ओ फिरकी वाली।
1: हाँ तो कल फिर आना।
0: नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे।
1: क्यों नहीं आओगे?
0: अच्छा वो तो गीत के बात करी थी, आप तो हमीं से डिस्कस करे लगे।
1: तो अब आपने कहा तो कि नहीं आऊंगी,
0: तो
1: कैसे नहीं आऊंगी?
0: गाना गावे जाए तरह फिर से वो सुनते सुना फिर से गाऊंगी मन लगा, ऐसा लग कि मतलब वो खत्म ना होए। लेकिन आप बीच में प्रश्न करे लगे हो तो कल फिर आना।
1: अरे हम आपसे पूछी थे ना, आप कहे नहीं हो, आपका आने नाना है हफ्ता में, तो आने नाना है।
0: हाँ तो अगले
1: जो भी हो जाए,
0: आए वाले सावन के शनिचर में आई।
1: अब सावन, अब हम ही तो महीना तो नहीं बताए,
0: हम सावन के शनिचर में आई, इससे पहले मायन नहीं सके थे।
1: ठीक है, इससे पहले
0: अगर आए भी गए,
1: इससे पहले हम आपको बुलेबो ना करवा। आप सावन में ही आयो,
0: अब हम सावन में आई। और श्रोता आप लोग भी जाना जाते सकी लोग कि सावन आवे वाला है, और पहले तो थोड़ा निराश रहा कर रहा है कि पानी नहीं बरसा है नहीं। हाँ। सावन आवा जाते है, हरियाली है ये नहीं, लेकिन अभी शायद खेतन में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हरियाली हो लाग है और पानी भी बरसत है, और यही मौसम में अब सावन आवे वाला भी है। तो आवे वाला सावन का तो फिर पहले से हम लोग तैयारी करा जाते है,
1: तैयारी करा जाते
0: हैं। सखी खाली कहात पर ही इनकी तैयारी तो और है, अभी हरे हरे चुड़िया तो इनके लुकवाए रखे हुई है, देखा जाए जौने दिन से सावन के मतलब शुरुआत हुई।
1: और साथ ही हमारे सखी का कम न समझो, उन भी लुकवाए ही जो है चूड़ी उड़ी, मतलब हरा हरा हरियाली बन के ये सारे मतलब शनिवार के दिन।
0: हाँ तो बात ये है कि सारी सखी लोग ऐसे कहीं ना कहीं तैयारी कही के लुकवाए अथवा तैयारी करत थी कि सावन आए मेहंदी लगावा जाए, चूड़िया पहना जाए,
1: तैयारी में
0: है ना। बस तब तक शायद बैठौने भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, फिर हम लोग सावन मत जानते हो कहते त्योहार शुरू हो जाते,
1: शुरू हो जाते व्रत, शुरू हो जाते सावन
0: सोमवार शुरू हो जाते हैं। तो बस भोलेनाथ के माँ बम भोले तो इन सावन से निकलते हैं, हम लोग मतलब मंदिरन के दर्शन सावन के व्रत
1: हम लोग भी बम भोले कहा जाए
0: ऐसे करते सावन के महीना के। भाई महीना कब चला खत्म हो जाता है पता नहीं लागत है ना। तो सखी हम लोग बातचीत करा जाता रहा, बातचीत तो आज कुछ नहीं करा जाता, आज हम लोग वैसे खाली बैठे हैं बस फोन के इंतजार में।
1: साथ ही आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए, हम लोगों के बात बत कही तो सुना ही जाता, ये हमका पता है, और हम लोगों के लड़ाई झगड़ा के भी बारे में सुनत हुई हो है ना, आनंद लेत हुई है। लेकिन साथ ही आप लोग फोन करा जाए, कहे कि महीना के अंतिम शनिवार है, और अंतिम शनिवार के दिन आप लोग फोन करके हम लोगों का भी हौसला बढ़ावा जाए कि कार्यक्रम में हम लोग और अच्छा बनावे की खातिर का करा जाए है ना। हाँ। कौन टॉपिक में बात करा जाए, आप लोग अपने सलाह दिया जाए। देखो
0: हाँ, बस यही बात में अति तेज से आप कहे हो कि श्रोता फोनों कई दिन ही स्वागत करा जाए।
2: हेलो
1: हेलो
2: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार जी, को कहाँ से?
2: मुन्ना सलमाने बोली थी गोसी टोल से, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ है।
1: अच्छा मुलाकात हुआ की बात हुआ?
2: अरे आप कौन चीज के बारे में कहा है, हम आज दिन के बाद खोला।
1: अच्छा अच्छा
0: बात ही है, क्या बताए सखी नाम?
1: हम मुन्ना सलमानी।
0: अच्छा मुन्ना जी, तो आपके कार्यक्रम में घर अंगना में स्वागत है, हम दोनों सखी आप लोग के समक्ष हम लोग फोन में बातचीत करा जाते है। तो
2: अभी तो बरखा चला थे, खोला नाला सब भाग जाए।
0: हाँ
2: सब भाग जाए और
0: हाँ ये बात तो सही बात है, अब जब बरखा शुरू हो जाता तो बरखा से पहले तैयारी भी करे चाहिए, और नहीं भवा तैयारी तो समस्या है।
2: नगर पालिका से सब करे चाहिए।
0: हाँ ठीक है, ये बात तो सरकार के अपन जो स्थानीय सरकार है इनका तो ध्यान दे ही चाहिए, और ये कार्यक्रम द्वारा भी हम लोग थोड़ा बहुत ही के बारे में चर्चा भी की जाए, और ये कार्यक्रम में और भी आपका संदेश देख चाहा जाता है, कैसे कहा जाता है? हेलो
1: हेलो मुन्ना जी।
0: हाँ सब बढ़िया है, आपके क्या हाल चाल है? कुछ आप परेशान लागत हो, आप जैसे कोई समस्या है तो बता ही सका जाता है, शेयर कर सका जाता है हम लोगों से।
2: गाना सुना तो ब्रह्मचारी के
1: जी,
2: ब्रह्मचारी
1: ब्रह्मचारी गीत सुनना चाह जाते हैं।
2: बाल विक्रमचारी में कन्याकुमारी,
1: हम है बाल ब्रह्मचारी कन्याकुमारी, गाना के सही से बोल बतावा जाए मुन्ना जी।
2: हाँ सुना दे,
1: गाना के सही से बोल बतावा जाए ना।
2: आ?
1: मुन्ना जी कही थे कि आप जो है गाना के सही बोल बतावा जाए जिससे कि हम आपका सुनवा सके।
0: तो की का सुनावे चाहा जाता है?
2: अरे आपका आपके जो है सार फेम का परिवार है
0: जी
1: जी,
2: और सुनने वाले सबका
1: जी जी।
0: तो ये जो गाना है ये गाना ब्रह्मचारी फिल्म के हुए। नहीं तनी यस खाली जब गाना के बोल आगे बढ़िया पता चल जाते है तो उनका निकाले में सजीला हो जाते हमरे सखी का भी परेशानी हुई जी फिर आप भी निराश हुई जी हो कि हम कहें तो हमका सुनाई
2: नहीं निराश क्या है बे
0: हाँ जैसे गाना के बोल आप ब्रह्मचारी कहा गा अब गाना के बोल का है या तुम फिल्म के नाम बता दी जाए
2: बाल ब्रह्मचारी
1: अच्छा अच्छा बाल ब्रह्मचारी कन्याकुमारी है ना
0: हाँ, फिर हम लोग ट्राई करा जाते देखा जाते और इसे फोन करके आप कार्यक्रम में सहभागी होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है नमस्कार
1: थीक। नमस्कार नमस्कार मुन्ना जी हाँ तो सखी ये हाँ, तो रहे मुन्ना सलमानी जी ये भी अपन बताएं जो समस्या रहा है और साथ में गाना के फरमाइश भी करी ने
0: हाँ तो गाना के फरमाइश में आप तनी मेहनत करते रहा जे विज्ञापन हाँ। तो है ये है और साथ जो कहीं नहीं कि हाँ ये नाला जो रहा है बाजारन में हो चाहे गांवन में हो लेकिन समय से पहले ये समस्या सबका रहा था चाहे स्थानीय सरकार हो चाहे जिका हो समय से पहले जैसे बरखा आवे वाला है तो एक दो महीना पहले से तैयारी करे चाहिए कि नाला के सर सफाई करावा जाए उके जो निकास है निकास कहाँ है कहूँ दबा है कि कुछ वहाँ फंसा है उके सर सफाई जब तक ना करावा जाए तो पानी तो मुसलधार जब बरसत हो तो बरसते हैं अगर निकास नहीं होता तो पानी जाम हो जाता जाम के कारण से का होते कि घरन में कई घरन में नुकसान हो जाते हैं अब नुकसान होता तो हर एक साल के काम होते हैं लेकिन हर एक साल में तैयारी हम लोग का पूर्व तैयारी करे चाहिए बात ये उनके कथन है तो सही बात है स्थानीय सरकार आप लोग अगर सुना जाते हो तो हम लोग के पहल अनुसार ये बात जरूर ध्यान में रखा जाए कि हर एक साल के हर एक समस्या प्रत्येक साल में सुनने को मिलत है तो फिर हम लोग पूर्व तैयारी काहे नहीं करा जाते इसका जरूर आप लोग तैयारी करा जाए और जो स्थानीय जनता है उनके लिए भी आप लोग अच्छे से सुनवाई करा जाए कैसे वही जनता आप लोगों का जितावत है वही जनता का आप लोग दुख दे कर काम ना करा जाए
1: हाँ कहे कि मौका आपका फिर मिले है ना हाँ, तो जनता का खुश रखा जाए
0: तो ठीक है हम मिलोंगे यही बातचीत करते हैं विज्ञापन का सखी आप पहले हमरे मुँह से निकल गए गलती तो नहीं होगा कि संगीत तरफ चला थी कि विज्ञापन तरफ
1: विज्ञापन की तरफ
0: बात ही है हम सोचे कि हमरे मुँह से गलती से निकल गवा है
1: कोई बात नहीं हाँ हाँ मुँह
0: तो फिसल जाता है जमाने से है ये चला जाए विज्ञापन की तरफ फिर हम लोग सुनते रह जाए गीत संगीत
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन
3: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ
4: होइन हामीसँग अझै आशा छ मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतीहरूको काख भरिएको छ
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो
4: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 98614169
6: हाय के गर्ने होला अब सुगर पनि बढ्दैछ थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन
7: ए तिमी यति चिन्तित किन के भयो फेरि
6: के भने नि डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ
7: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन मैले राम्रो खबर सुनेको छु
6: कस्तो खबर
7: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ
6: ए साँच्चै
7: अझै सुन महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ
6: ए त्यो त झन् राम्रो
7: हो नि डाक्टर पूनमाचारी एमबिबिएस एमडी केयु आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई एमबिबिएस एमएस केयु वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ
6: वा अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो
7: अझै अरू सेवाहरू पनि छन् दैनिक ओपिडी सेवा गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा भिडियो एक्सरे इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा
6: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि
7: हो त अब ढिला नगर जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न
6: हजुर आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज फोन नम्बर 081531860 र 081531861
7: अब चिन्ता होइन समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: Bunny, extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
3: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
4: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
3: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई की से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बची सका जात है।
4: जानकारी रहक चाहिए कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
5: कृष्ण सार FM 94 MHz कृष्ण सार जस तेज।

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: गाना तो सुना गया है ना?
1: गाना सुना गया
0: है मुन्ना जी के फरमाइश मारा है।
1: हाँ, और गाना जैसे मतलब हम लोग ज्यादा दिन पर सुना गया है।
0: हाँ, हाँ लेकिन यही गाना समझ नहीं पावा जा रहा है कि मुन्ना जी कहाँ कहाँ थे। जैसे
1: मैं कभी कभी कोई चीज का कि गाना पसंद रहा था लेकिन उनके बारे में हम लोग जानकारी नहीं ली जाते। अब गाना सुना गा बढ़िया लग, वो विषय गाना के थोड़ा बहुत बोल तो बतावत रहे बस वही से,
0: मगर वो बोल हाँ बतावत तो रहे लेकिन बोल माल थोड़ा डिफरेंट रहा है, अंतर
1: हाँ,
0: रहा है।
1: तो जरूर मुन्ना जी आप लोग सुना का हो गीत संगीत, और गीत संगीत बढ़िया रहा है। और ऐसे हमारे साथी लोग आज जो फोन में जुड़ा गया है श्रोता साथी लोग, उनका गीत संगीत के साथ हम लोग बातचीत भी करा जाते हैं, और बातचीत के साथ साथ समस्या के भी उन लोग जिक्र करी है। जैसे मुन्ना जी कहीं ना है कि नाली की समस्या है, नाली जाम रहा था, तो सही बात है। ऐसे जो आपके हाल समस्या वो चीज़ भी आप बात शेयर कर सका जाते हम लोगों के साथ साथ कार्यक्रम कई लोग भी सुनत हुई हैं, आपकी समस्या सुनी है, बात के चर्चा भी बढ़ी हो ही सकते हैं, सुधार भी आ जाए, और सुधार हो भी चाहिए,
0: बरसात भी है,
1: पानी जहाँ जाम हो जाते वहाँ रोगन के समस्या शुरू हो सकत है।
0: हाँ, पानी रुका रहा था गड्ढा में या तो बीमारी के कारण भी बन जाते हैं।
1: हाँ, और आज कुछ बातें ऐसे दो चार जना से निकला भी है पानी के समस्या हो, वैसे तो पानी बरसत है, रोपाई शुरू है, खेत बैठावा जाते है, खुशी के बात है, लेकिन जहाँ पानी जाम रहा थे, जहाँ पर हम लोग रहा जाते है, घर परिवार के आगे, घर के आगे अंगना माँ पानी जाम है, और फिर घर हिन के कुछ पानी जैसे मान लो बर्तन धुला जाता है, काम करा था, पानी भी निकास हो नहीं पावत है, तो वहाँ और सड़न हो जाता है, सड़न के कारण से वहाँ मच्छर कीड़ा कई चीज़ें, और उनके जो सड़न रहा था जिसके कारण से उनके हवा पानी में दुर्गंध हो सकता है, हम लोगों का रोग लग सकत है। तो इससे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे और जो जो बड़े बुजुर्ग रहा थे उनका बचाव में तनि थोड़ा समस्या हो जाते हैं, कहे से उनके जो हम लोग हैं यूनिटी पावर जो बीच रहा जाते कह रहा था, तो लड़ाई क्षमता ज्यादा रहा थे, और बच्चन के यूनिटी पावर थोड़ा कमजोर रहा थे, बूढ़े बुजुर्ग रहा थे उनके यूनिटी पावर कमजोर रहा था, जिसके कारण से उनका जल्दी से रोग लग सकत है। तो बात तो सही है, ऐसे चीज़न का हम लोग ध्यान में रखे चाहा जाता है, और समय से पहले तैयारी तो एकदम जरूरी है। हम लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा यही समस्या है कि कोई भी समस्या आवे से पहले हम लोग पूर्व तैयारी नहीं करा जाते, पूर्व तैयारी करा जाए तो कोई भी समस्या के उनके समाधान निकाल सका जाते, और समय आवे पर उनके रास्ता भी निर्मल रहा थे, सही रहा थे, जो आदमी कल का बात भी कह सकते हैं, अन्य जगह में भी जिक्र कह सकते हैं कि हाँ हुआ तो देखो ऐसे है, हुआ सर सफाई है, बरसात में भी कोनो समस्या ना है, भवा पानी के निकास बढ़िया है, लेकिन फिर भी हम लोग हर जब समस्या शुरू होता तब मैं चर्चा पर आ जाते हैं। हाँ। इससे पहले वो क्या हम लोग फिर भूल जावा जाते हैं,
0: तो वही बात है, विषय याद आई जाते हैं, जब कोई बात करत है तो बात याद आई जाते हैं।
1: हाँ, अब ऐसे अगर पहले से समस्या का समाधान हो तो आदमी परेशानी में न पड़े, परेशानी न पड़े तो विवाद न उठे, बात न उठे, तो इस चीज़ का जाना भी जात है, लेकिन का होता है कि आदमी अपने अत्ता व्यस्तता कारण में कि कोई भी चीज़न के की का आवश्यकता है सही समय में याद नहीं करत है। तो हम लोग ऐसे बातचीत आज करते रहा जाए नहीं सकी, हाँ, और फोन बीच बीच में साथी लोगन के आते हैं, तो हम लोग अब क्या करे चाहिए, आप कुछ
0: अब
1: सामान आए वाला है, हाँ, और
0: सामान तो आए वाला है, व्यापारी विश्राम के तरफ चला जाए के बाद, सामान तो आए वाला है, अभी आवन आई है इंतजार, अब के हम लोग तरखरमा तो है हैं, अभी फिलहाल गाना आपका अच्छा सुनेबे, चिंता ना करा जाए।
1: हाँ, चिंता बिल्कुल नहीं करी
0: हमरे होते हुए।
1: हाँ हाँ।

0: हेलो हेलो नमस्कार
1: मैडम, नमस्ते
0: नमस्ते को बोला
1: जाता है? और चंदा मैडम का भी हमरे तरफ से नमस्ते
2: नमस्ते नमस्ते।
0: हमरे रब्बान भाई बोला जाता है।
1: जी हाँ, हम रब्बान भाई बोला जाता है।
0: बस आवाज हम पहचान ली थे अपने भाई लोगन के। और क्या हाल चाल है?
1: सब ठीक है मैडम, आप लोग
0: बड़े देर में फोन करेगा, कहाँ रहे हो आज?
1: अरे मैडम, एक SDF के कार्यक्रम में रहन।
0: ये बात
1: तो बाद में देखने याद आओ तुम के नाश्तो कार्यक्रम है।
0: हाँ, आज फोन इन कार्यक्रम रहे, वो महीना के अंतिम दिन में आवत है, चौथे शनिचर आवत है नी।
1: हाँ, तो अभी हमको याद आता, देखें तो हम कार्यक्रम फोन कर लिए मैडम का।
0: चलो ठीक है, कार्यक्रम के हम लोग अंतिम अंतिम में भी पहुँच गोवा का है तो। और सब हाल चाल ठीक है?
1: सब मैडम बढ़िया है,
0: पाली का तरफ सब बढ़िया है,
1: सब हाँ सब ठीक है, बढ़िया।
0: तो गीत संगीत अब की का सुनावे चाह रहा था, ये बताए तो हम लोग बड़े जल्दी जल्दी में हन।
1: गीत संगीत सबसे पहले आपका और चंदा मैडम का भी
2: धन्यवाद।
0: हम लोग हमरे सखी के भी कान खोल देबे कि बढ़िया सुन ले।
1: और जानकी गांवपाल के संपूर्ण स्टाफ लोग उनका भी सुनावा चाहिए थे, अपने घर परिवार फैमिली का
0: जी,
1: और जो दो देश विदेश हमारे साथी लोग है जहाँ तक का सुना तो जो लोग सुना तो सबको सुनावा चाहिए थे मैडम।
0: धन्यवाद है बहुत। अब गीत संगीत के कोनो बोल है कि जो हम लोग सुनाए दिन जाए उसका सुना जाए?
1: सावन का महीना
0: आया है,
1: पावन करे शोर।
0: अच्छा, पावन करे शोर, सावन तो भी आवे वाला है। जब हमरे तना तो अपना होगा, हम अभी सावन ना आवा है
1: तो मैडम अब आवे वाला ही आज, मतलब लास्ट शनिवार है।
0: ठीक है, तो हम लोग कोशिश करा जाते हैं आपके बजे वाले गीत अपने संपूर्ण जत्ता नाम कहागा साथी लोगन का, पालिका का, सबका जरूर सुना जाए और सुनावा जाए। तो रबान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे कार्यक्रम से जुड़े रहा जाए, हम लोगों का भूला ना जाए। और कार्यक्रम द्वारा कुछ भी कहे खे कोनो संदेश है तो जरूर कहा जाए।
1: ठीक है मैडम,
0: ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम, दोनों लोग मैडम का
0: नमस्ते। नमस्ते। हाँ सखी,
2: हाँ सखी,
0: तो ऐसा करो हम लोग अब जैक टाइम में भी आई गुआ है नी, और हाँ। सावन के याद करते जावा जाए है नी, गीत संगीत के साथ। तब तक आप गीत संगीत निकालो तो हम लोग भी संपूर्ण श्रोता लोग जो अभी 3 बजे तक कहा गया है और 3 बजे तक रेडियो के साथ ही आप लोग बैठा गया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही आप लोग जाना चाहते कि कार्यक्रम 3 बजे तक रहा था, 1 बजे से 3 बजे तक समय लंबा रहा था, लेकिन बीच बीच में थोड़ा समय अनुसार शेड्यूल अनुसार विज्ञापन तो रहते हैं, हमारे सखी के भी गलती नहीं है। कैसे कोई भी कार्यक्रम से पहले से फिक्स रहा था हम लोग, सखी का तो हमहूँ कहा करे थे, लेकिन अब सखी बिचारी कहा करें गठरी ज़्यादा उनके बंधा रखा रहा था जी के मारे, उनका हल्का करेक्ट पड़त है और दूसरा गठरी हम लोग के घर अंगनक रहा था, तो आज गठरी हम लोग फिर नहीं रहा है। कहे से आज तो फोन इन कार्यक्रम रहा है, तो अगले हफ्ता फिर हम लोग शनिचर के दिन नया विषय वस्तु के साथ है नी, नया विषय वस्तु के साथ। और नया विषय तो हम लोग अभी नहीं बता सका जाता है, कहे से आप लोग भी तो एक हफ्ता खातिर सोचा जाए कि हमारे सखी लोग ये दोनों सखी लड़ लड़ के का लेके आई हैं,
2: का लेके आई हैं, अभी सावन तो लग जाइए।
0: ये के साथ साथ हमने संपूर्ण जो साथी फ़ोन करा गया है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इतनी मेहनत से फ़ोन करा जाते हैं, हम लोग से साथ सहभागी हुआ जाता है और सहभागी होते साथ हम लोगों का भी खुशी लागत है ना सखी कि प्रत्यक्ष बातचीत करे मिलत है। और कुछ कार्यक्रम के जो हम लोग बोझ लादे रहे थे आज थोड़ा हम लोग हल्के रहे थे,
2: हल्के
0: फिर भी नोकझोंक आज कमे भवा है, कहे से महीना मौसम बड़ा अच्छा है, थोड़ा नींद माँ हमरे सखी नह भी हैं हमहूँ हन, आलस के महीना है, कहे से खेत बैठावे
2: हाँ तो चलो और का
0: है नहीं चला जाए
2: हाँ।
0: तो खेत बैठाव भी है सबका, ऐसे गीत संगीत सुनते रहा जाओ, जो भाई लोग फरमाइश करीनो गीत भी सुनते रहा जाए। तो अगले हफ्ता नया विषय वस्तु के साथ फिर हम लोग उपस्थित हुआ जाए, तो आज का तिर सखी का धन्यवाद देते रेडियो कृष्ण सार FM ऐसे सुनते रहा जाए और हम लोग का विदा दिया जाए। नमस्कार, राम राम, शुभ दिन।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाये तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
2: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
1: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
3: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
1: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जायत है कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
3: कांति आरोग्य अस्पताल सुरखेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9804483697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले अधिकतम 100%सम्म छुट लिएर आएको छ। यदि समयमै प्रिमियम नतिरेको कारण तपाईँको जीवन बिमा ल्याप्स भएको छ भने यही असार 26 गतेभित्र नवीकरण गरी विलम्ब शुल्कमा अधिकतम 100%सम्म छुट पाउनुहोस्। नवीकरण शुल्क अनलाइन मार्फत वा नजिकैको शाखा कार्यालयमा गई बुझाउन सकिनेछ। थप जानकारीका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। सूर्यज्योति लाइफ, जीवनको लागि।
1: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त, पूर्वपट्टि।
3: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
4: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 0184140007 र 98482369।
5: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डारे, नाई ठीक आते।
6: सुनो बहनी, खुशी के खबर।
7: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर, भगंदर, जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिय और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके। वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 0815-31000।
9: आमाको उपचार गरौं भनेको कहाँ जाने होला?
10: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदै छ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
9: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
10: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
9: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
10: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज। सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छानामुनि।
9: सम्पर्क नम्बर 081535717। हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ, नेपालगंजमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालका लागि कहाँ जाने होला?
10: ए, त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि। नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया, अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगो सम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
9: ए, त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
10: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
9: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,
10: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 6, फुलटेक्रा, आर्मी ब्यारेक सामुन्ने, राप्ती रोड, बाँके। सञ्चालक पुरन चौधरी।
9: सम्पर्क नम्बर 98480-20697, 98580-23697 र 98014-83697।
10: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ, नियमित कानको जाँच गरौँ।
11: Back to back. In this song on Stay Tuned.

0: तो मेरे बैचमेट थे।
1: यस।
0: तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया?
1: क्या बताना? कि मैं उस लिपस्टिक वाली लड़की को ढूंढने के लिए आया हूं। और एक बात बताऊं, तब वो हार्ट ब्रेक थी, वो हार्ट अटैक है।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: आइ विवेक उठ्यान खासा छपासोर जिन्छ हो
4: ए दे मर्गिनु मर्गिनु
3: ओइ शंकरयान एक घर फुटबल बन्द कर त विवेक खान वहा का हुलन वहा छपच्यारो ना जाओ कहटन हु
5: ओ हेरो त मोर सबवा भागल पाटल की का हो विवेक खान ए हरी स्कूलिक फुटबल ह्या रहिलक त झन का दसा पो आपनन
4: देउ हाली मेन त सबो काटल मुना मुना
3: विवेक जिना क्याउ संघारु देउ शान्त होका ढ्यु निचलक बैठो हमरा तुहिना स्वास्थ्य केन्द्र पुगैबी अइ पारस तु घरक दाबु हन मोटरसाइकल ले खाएक
5: हो
3: त
5: हो विवेक हन यहाँ खुला ठाउँमा सुताई ढ्यु झल्याङ झुलुङ निक राखन मुहारी कापीले ओही हन हक दिहेटु फिल्लीमा काट राखल सुइटीबा काटल ठाउँमा न छुओ चलाई निहुइ न
3: आफमै विवेक हन सजिल हुइना कैख वाकर कसकेला पेटी टाँग धीरा धीरा खोल ढेटु ओ घरी वो मुन्द्री फेक हार देहम
5: मिठा रोशन मै यही बेला विवेक का जुत्ता वो मजा धीरा धीरा निकाल देहट
3: युर्जसिन सापन का दसाई खतरनाक नि रह समय में जो उपचार कराई सेक लसे बिखा सपन का काटल मन यहाना फे बचाई सेक जिठा सपवा कटलक मन यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्र में पुगाई सेक लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई सेक जिठा
6: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाख लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाख आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सेक जिठा
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: Böyle panya.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
3: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी
2: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढ़ाई हो बढ़ाई लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
3: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संगे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके
4: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
5: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 9858030479 र 9848021380
6: उचित शुल्कमा उत्कृष्ट शिक्षा कहाँ पाइएला
7: त्यसका लागि नेपालगञ्जको धम्बोजीमा अवस्थित सन्मिम इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल छँदैछ नि
6: हाम्रा विशेषताहरू
7: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक भएको
6: सुरक्षित वातावरण र यातायातको सुविधा भएको
7: मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षण सिकाइ
6: अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड
7: वातानुकूलित कक्षा कोठा
6: अत्याधुनिक प्रयोगशाला खेलकुद र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरू मार्फत विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा विशेष ध्यान दिइने
7: एसईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यस विद्यालयमा कक्षा 11 व्यवस्थापन संकायमा भर्ना खुलिसकेको छ
6: सिट सीमित छन् आजै भर्ना हुनुहोस्

0: सनबीम इंग्लिश मीडियम स्कूल नेपालगंज एक धम्बोजी बाँके। संपर्क नंबर 081536422 98580 36422 98580 27994।
1: यो कृष्ण सार FM
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: Koyle Pony'a Extreme Energy Drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाएक लाख किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो आय मूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेशा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके

0: बीर डेंटल।
1: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामी छाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामी छाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डाले, नाय ठीक आते।
4: सुनो बहिनी, खुशी के खबर,
5: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिय और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
7: सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अधिकतम 100% छुट लिएर आएको छ। यदि समयमै प्रिमियम नतिरेको कारण तपाईँको जीवन बिमा ल्याप्स भएको छ भने यही असार 26 गते भित्र नवीकरण गरी विलम्ब शुल्कमा अधिकतम 100% छुट पाउनुहोस्। नवीकरण शुल्क अनलाइन मार्फत वा नजिकैको शाखा कार्यालयमा गई बुझाउन सकिनेछ। थप जानकारीका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। सूर्यज्योति लाइफ, जीवनको लागि

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै सहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कुटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्फ सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: चर्चा छ मार्केटमा, हाम्रो नाम घन्किन्छ।
3: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
4: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
3: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
4: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
3: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है, घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
4: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
3: काहे न बनाए दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
4: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
3: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
5: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए।
4: हाँ दीदिया,
6: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 98680 73 70 और 98195 0 67 82।
7: यो कृष्ण सार FM
8: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्ती के तेज़।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी